सहन शक्ति जिस विच ए वस्तुआं आ गईयां, जिस विच ए ताकत आ गई, ओ दुनिया तो ही विलक्षण है, ओदी महिमा अपर

चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनु समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नु तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुवारे दी इट मोरी नू ला आए हो, भाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो, आप जी ने यह रिश्ता नहीं लैना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता। ते संगत दा हुक्म मन के गुरु पंचम पातशाह जी ने यह रिश्ता मोड़ दिता। अज चंदू नू ए वेला हथ आ गया कि समय दी हकूमत ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू गिरफ्तार करके चंदू दे हवाले कर दिता और चंदू ने अपना बदला लिया। ऐसी एक गाथा आउंदी है, पर असलियत यह है कि हकूमत नहीं सी चाहती सच दी आवाज बुलंद होवे, हकूमत नहीं सी चाहती कि लोग सच दी आवाज नू सुनन ते उस सच दे उत्ते चलन, क्योंकि सच उत्ते जे प्रजा चल पई ते बादशाह नू फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जाती है। उन्हें तौज के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हां ए जो झूठ दी दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस, जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हां कि ए दुकान बंद कर दिती जावे, जिस तो स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय दी हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच दी आवाज लोकां दे कन्नां तक पहुंचे, वो सच दी आवाज नू बंद करना चाहुंदा सी और इस दा इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप वो कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुलम करने शुरू कीते, चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नहीं रखण लगिया, हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर एदे विच लाया, ओदे उत्ते ए शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनन दा संदेश

0: देख लेंगे कृपा होएगा कि नहीं। इसे इट्स अप टू अस टुगेदर।
1: आप जपाए जपे सो नाओ। गुरु गोविंद सिंह जरूर मेहर करेंगे, जरूर, क्यों नहीं। अगर इन्ने प्यारे सिख उन्हें इन्ना जबरदस्ती नाल बुलाते हैं, नहीं मनन गे? मनन गे जरूर।

आखण लगे भी जिन्ने तेरे पैसे बन गए मैं देवांगा। पैसे लै लमी तू किराया लै लमी। पैसियां बल देख के मलाह दा मन मन गया, चंगा बई बैठ जा बेड़ी विच। अज दोनों ही जाने लोई दी ते कबीर दी बेड़ी विच बैठे ने। ज्यों ही बेड़ी दे विच चढ़े ने अगों सेठ उठ के खलो गया। ओए मलाह है की करी जांदा है, गरीबड़े आजियां नू मेरे नाल बठा।

गरीब नूं लागे भी बिठा के राजी नहीं, जिन्हां नूं तू सुख दिते ने, जिन्हां ते तू रहमतां कीतियां ने, देख उन्हां दा मन किड्डा बिगड़ गया है। गरीब नूं लागे भी बिठा के राजी नहीं, ऐ मेरिया रब्बा गरीब होना कोई जुल्म है। रो रो के उस प्रभु नाल गल्लां कर रहे, ऐ मेरे प्रभु जे गरीब होना जुल्म है ते सारिआं नूं क्यों नहीं अमीर कर देंदा, क्यों नहीं सारिआं नूं धनवान कर देंदा। सत्संगियो उस प्रभु दी लीला बड़ी न्यारी है, अजे कबीर दी अरदासां ही कर रहे ने, अरजोईयां ही कर रहे ने, ते की कौतक बरतिया किनारे दे उपर। जिस पत्थर ते बैठे ने वो पत्थर अपने आप हिलण लग पिया है। लोई देख के हैरान हो, ऐ की होया, पत्थर हिलण लग पिया है। कबीर जी ने लिब जोड़ी हुई है, लोई तक रही है, पत्थर हिल पिया, एहो जिहा हिलिया बेड़ी दे बांग पानी ते तैरन लग पिया। की रहमतां होईयां, तैरदा होया उस सेठ दी बेड़ी नालों भी अगे निकल गया, ते सेठ देख के बड़ा हैरान होया, बई ऐ की गल, कोई तका नहीं ला रहा, कोई चप्पू नहीं मार रहा, ते बड़ी हैरानगी दी गल, पत्थर अपने आप पानी ते तुरिया जा रहा है। सेठ देख के बड़ा हैरान हो रहा है, पत्थर अपने आप पानी ते तुरिया जा रहा है। मलाह नूं पुछिया भी ये कौन है, मलाह ने आख्या कबीर है। ये कबीर है, इहदी ते अगे भी बड़ी सोभा सुनी है, ये बड़ा सिमरन वाला है, सुनिया है।

तो प्यारी साध संग पे उस प्रेमी ने किया बाबा जी जिन्हें को मतलब हल हो जाए ओदिया तरीफा जिन्हें को सवाल पूरा ना आवे चंगी विदा कर साधा तो सुभाव बने बाबा नंद जी महाराज कह लगे चंगा फिर उत्सुत भी कराया करो तो निंदा भी कराया करो बाबा जी एक ही बचन उत्सुत भी करिए निंदा बाबा जी कह लगे थोड़ा सुभाव बन गया है ना करेगा कर सारी संगत हैरान होगी आज कोई सोच नहीं पाओ बाबा जी कह लगे ये थोड़ा सुभाव बन गया उसत निंदा करना जे निंदा करनी है तो अपनी करो सुभाव बने जे निंदा करनी है अपनी करो सब अवगुण में गुरु ये गुरुमुख नहीं कर कबीर जी गुरुमुख सन कहते कबीर हम सबसे बुरे असि बुरे होके चंगे बनने की कोशिश कर पर चंगे बनता यह सब तो पहला निशाना है जिन्हें डालियां फल लगते हैं वो चुग जाने कबीर जी ने कहा कबीर हम सबसे बुरे हम तक भरो सब को जिन ऐसा कर हूं दिया मीत हमारा बाबा जी कहने लगे अपनी निंदा कर अपने कर्मों की निंदा कर जी उत्सुत करनी है तो मेरे धन गुरु नानक जी साहब जी उत्सुत करवाए करें पढ़िए ना उस्तुत करके

निर्मोल कीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदाने के ये समूल वस्तु ना मुल बन इस वस्तु का मुल बन पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्होंने कीर्तन रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरियां मालिक पर मरदानिया यह की है महाराज एक सौ रुपये की है अजू कह लगे आप करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज हूं बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है तुम कहते हो वापस अजूर कह लगे मरदानिया आप किसे चुकी फिरा गए मरदाने ने कहा महाराज तुम थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावा हूं थानू कदे नहीं खावगा महाराज भुख लगी अजूर कह लगे जी मरदानी अभी मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले चू न बंदे पंछी ते दरवेश और जिन्हों तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठनी बंधते जवे देवता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे ले जाए एक सौ रुपये की खैरी वापस दिखती सात राज अंदर होर प्यार आया नौकर नु बुलाया धक्का कोई रबी दूर आया है और सौ सौ के मन धरे है प्रसादे का थाल परोसना मठियाई भी रखना दुधा दड़वा भी भरना कितना रुमाल पा के पूछा दे मैं दुकान बंद करके आना हाँ उस दादे के दर्शन करना अदरका पहुंच गया सहबा दिल के पदार्था का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अभी दृष्टि न रखिया सिर को नजर करम तिरकार नानक नदरी अगर कई दिन झोलियों पर उठिया मस्ती बैठा चाहते इधरों सार साहब भी आए अजूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया उतारने वाले दुनिया दाता देने वाले मेरी झोली सिख है अजूर कह लगे सार साहब की चाहना है साक्षा दुनिया भी दाता सारी है हीरे दान पन्ने पुखराए खनदौल सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुशी ही बने मन नहीं रही मन संतुष्ट नहीं है मन तो संतुष्टि नहीं हजूर कह लगे हां सात राय मन का भोजन हो रहा है मन ये नाल नहीं रजना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रजना गरीब नवाज फिर करो कृपा अजूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि भर अजूर कह लगे सरसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर ले महाराज फिर मैं अजूर कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर दे चरना से कह ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निमरता लैके होंगे तो नहीं पर सरसराय का जरा मन रूपी चोलिया सी वो बिल्कुल सुखैर अंदर शरदा से प्यार की रो पिया हरी परिवार यह तो मेरा बच्चा है पर जे तुम आखो तो मैं थोड़े कुत्तिया ने पैर से मना सकता तो दास बख्शो मेरे नाल मेरे मन भी सुख दूर हो अजू ने बख्शी पीती सासरा जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुम भी मन करके नेड़े हो जाओ बख्शिश होने लगी है हजूर ने सारसराय के सिर से फिर प्रयास रखिया अभी उसकी की नाल तकिया देखिया सारसराय जब सतनाम कर हुक्म मस्तक हाथ विचो मार कड़िया बड़िया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो सारसराय सिमरन नाल जुड़ता है त्यों त्यों मन सुखी हो जाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोरे तो सीमा मेरा सदगुरु जी तो अज खालस राय दोलियां कर दिखा मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना भरे अज खास पूर्व माशी का दिन आखो स्थिति भरे खालस राय दोलियां भरिया गई थोड़े उत्ते ही रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अनेरे को दूर करनी जाएगी गुरु की मेहर जिथे जाएगी चोरियों पर तो आओ प्यारी आज संगत आप अनुभव
बहुत माई साई जो अमृत ले रही है।

पर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फरक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने, दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ड़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुलमी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है पौ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। आओ सामने तेरी अम्मा खलोती, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उहदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मामां इंज सिदकों डोलदियां नहीं हुंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मामां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ड़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल।

को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौडियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौडियां तो। कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु हो जहरी कहावै। जहरी कहाए पुन कौडा को बनज करे, पंच प्रवान में पत सटा घटावे। की वेखिया फिर ओई मैले कुचैले कपड़े पाए, ते थां थां ते होका देंदा फिरदे, ते कौडियां नाल फिर व्यापार शुरू हो गया। इतना हीरियां दा उच्चा व्यापारी हो के ते जिथों व्यापार शुरू कीता सी ऐसा धक्का लगा कि जिथों व्यापार शुरू कीता सी उथों फिर शुरू होया। लोग हसदे ने, मजाक उड़ांदे ने, कर्जे देण वाले सिर ते खड़े हो जांदे ने, लैण वाले भी। गुरु की साध संगत ओ मुसीबत विच फस जांदा है बंदा। लोग कहंदे ने आखिर तू कीता की? भाई साहब जी अपनी गल ते आउंदे हन, वचन कर दें

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया, पर की वेख्या जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया, कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा है। आ थोड़े दिन ही होए है, एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालिआं ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर, कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओहदा ही जाप करना है ना। एक वारी प्यार नाल बोलिए ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते इनू पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा है, जिवें पति विरता स्त्री सावधान होंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओहदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं, सत्कार अदब हर धर्म दा करना है। पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, ओह किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारिआं दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नूं मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिखी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने ए गुरु आप ही चाहे तां पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आं गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने

राज साज हम पर जब आयो यथा सकत तब तर्म चलायो। कलगीधर पातशाह बड़ा सुंदर लिख दे ने, राज साज हम पर जब आयो, ए राज पाठ दी जिम्मेवारी जद मेनू मिली यथा सकत तब तर्म चलायो, जिन्ना भी हो सकया मैं इसनू अगे तोरन दी कोशिश कीती।

चाल हम ते पुन पे शहर पाम टाकी सुध लई। ए पौंटे दी धरती जो राजा मेदनी प्रकाश दी सी, राजा मेदनी प्रकाश ने सतगुरु नु अपनी मदद ले याद कीता। जब सतगुरु ने आके सहायता कीती ते मेदनी प्रकाश कहन लगा, साहब जी एक याद अपनी तुसी भी इत्थे बनाओ। ते सतगुरु ने जमना दा तत सुंदर वेख के अपना सज्जा चरण कोड़े तो तले लाया, उस धरती दा नाम श्री पौंटा साहिब पै गया। कहिंदे ने सतगुरु इत्थे विराजमान होए।

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरं मनोमत मटकी कान फोरन। कंदनी कृपाल चंद उदासी जी ने आई जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारिया, जद कुटका उदे सिर दे विच वजिया, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहा, उठी चिच इच्छन कदा मेट जोरन मनो माखियन मटकी कान फोरन। जद सिर दे विच सोटा वजिया ते उदे विचो मगध दियां छिट्टां इंज बार आईया जिवें के भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दिती होवे।